0: घड़ी में अगर 26 मिनट हिंगा फमेदा राज न पेश हो गए हुन तेरी न गुलाल उमा मैसेज को ल में जेहनी DFM 91 में पेज PSM या एप में तेरे को मैसेज को लेवे न नोट को ल बैवरिंग तेरे गुरु तुम हो बैवरी न गुलाल वाह का धक्का हम गए तुरा ए बैवरी के इतला लावे जहाल दिन उड़ना मे तो के मे शो वे सार में नोगर तेरी सिंगमा हमें कोरिया गेंदर मे तो के शो के तेरे तफा तो एक की एक की बात हिम ना दाय के कोरिया में गेंदने एको तो हमें हुन तेरे इतला लावत जहालम गई तुरा और में मे शो का हम तफा तो एक की सेगमेंट तक एक की कोरिया दानी हफ्ता के अंगार दो हंग हास सेगमेंट तक एक की कोरिया दायर मे तो के शो का में बाला लाना हम सेगमेंट तो तेरे ऐतम मितनुं अति एहारा मिहार मिदे सेगमेंट में तो के शोक गेनेस दे रहे हों तेरी बैवेरी वाम मैसेज कोलो मुदाम में जहनी पीएस में ऐप में तेरे को दें शोके तेरे हम कुरी में फाशम फाह कोल दें आर में राज्य के मौसम को रेला फाह कोरा को तंगर में बादा आलान में हम मौसम आप हैं में फाह के अपडेट्स इसमें तो के शोके तेरे और में हिमनाल दे मुदान दें शोका फुरतम बैवेरी आया मिहार गुड़ा लिख फॉर मी फुरतम बैवरी कर में ना गुड़ा ले फमी बनी अज़ला या अस्सलाम वालेकुम अज़ला
1: वालेकुम सलाम
0: कब कीने हाल हुआ
1: आज हम
0: वाले हाँ तो वैसे कद हिसाब एक ती उड़े नहीं
2: की को क्या ऐसे
1: साल वैन जी हिसाब का दाम लेकिन गाने ही है मी कोटे को निवाज है मेरी
2: ओ हैं तवानी मिहार बेरो को हुरी मा वैन जी हिसाब का देवे तो तिमस्से के कोरेनी दो वायन नुचे हैं आ
0: वायन नुचे आडू माडू तो है कहाँ मम्मी अब दे साहर में कोरा
2: शकुआ
0: है देंगा नहीं है माँ बड़ो बदले ना देता
2: है शकुआ है
1: शकुआ नहीं दो
2: आ
0: अस्तुस कब की कॉल्ड नहीं थी
1: कॉफी
0: है कहाँ ऐसे तो लेने कोम्बे का की कॉफी का तो लेने
2: ऑफिस कुदी ना एक कोते ओले नी दो
1: ऑफिस कुदी ना नो
2: साले इंगे दुबस फेशु मा हम कॉफी एक कहा लेच्छे हम बेनु कोल्लो मरा रंगलो वाने ताजा को फेशु मत दो कीने वाने मूस मरा वै बारी थे तिकोल हम
1: ऐ हाँ वै बारे नो अमी वै जेहे का निवाइन ने सने जो हुरी
2: मा ओ हैं तब मैं दो विस्तार को शनों गोती
1: विस्तार को होती ओडुमती हम बाणको
2: आ मिकोले स्वर बाणको ओती इंगे देमे देमे सम वेहला फाणे काल गोतक कुडको कुडा कुडा कुडको खाणिस जहा इंगे देमे बला लेरुका
1: मिकोले का चाइंगे लो जहा एकम ओती विलागडे हदा काल गोतक मुहुम फणे इये सुर मिसा गोतक मेवलेने मौसम हम
0: ओसार फाणे हम देमे देमे दो
1: अरे के बारे बारे
0: कोपा दे मिया दुगे मी एने रावा लाफुर कंकमा मिहुरी हाक मे रंगला दाणे हि वेत
1: ಗುಮ್ಮಿದೆ
2: ehen tawani mikola kainge ta teme war ka shenu e war nu ba ba got ka faade ge tikke khani ja ja ja de mi ha tem ma la war wa ko ta go ta ne he war
1: ka vehi gani fa hutta la ni do
2: a de veheru ve ni he ay chuppa dir kol ka bo ko vehi fa de mi he ko temen hi tu la ge ni kunna war e ge asara gos te
0: de war hitta ti got ka vehi ni e buna
1: te de beno war na hitta ti got ka
2: ai kal mi he court ve slam vi ba nu lam vi ba e gotan hitan ara e kama court nu la go si ya tang dura tang kole dura go si ya mu komme sara ka mi ha te me e fa ada ka de e ko a ka go te ka shen no do shau as
1: ಮೆಂದಮ್ಮ
0: ए आने हम बने जा अजला में नुला की क्या महार में ने मिजे नहीं दे रहे फती बैंग
1: तिकोला में हिजे नो मिकोला नो है हमारा बो कवारे नो सुट्टा एरु ते में नो कुल ना
0: म एरु ते बिरों में सुनो केरे नो नो कुल ना कशे ए दें मेह को ते मेह खाल को तकर नो गेरे आने गो ते कब बना ना मते मुन्ना कसने सलामते नो ते मुन्ना कसने सलामते दो ರೆಡಿ ಗಾಮತಿ ಬ್ಯಾನೆ ಹೆಂ ಬುಣಾ ಕಮ ಬಾಣ
2: ತೇದೆ ಅದಿ ಹೋಣು ಕಮ ಅಂಗ್ಯಾ ಗಣು ಜಿಗೆ
0: ಏಯತೆ ಹೆಂ ಕಮ ಮಿ
1: ದೋಸ್ ಕೊಪಿಯನ ಬಸ ಮಿ ದುತಿ ಆಮ ಕೊ
2: ಮಿ ಯದು ಮಿ ಜೋ ಮಿ ಏಹೆನ್ ಶಹು ಕರ ಮಿ ಕೇನೆ ತಾಂ ಕೊಳೆ ಸ್ಲೋ ಕೊ ಶೆ ಮಿ ಯದು ಮಿ ಉಳೆವೆಣಿ ಹೇಲಾ ಫೇಸ್ ಮಿ ಹಾ ತಾಂ ಕೊಳೆ ಸ್ಲೋ ಎಫ ಹೋರಿ ಕಾಲಿ ಹುಸಾಸ ಮಿ ಯದು ಕುರೆವೆಣಿ ಹೆಂ ವಿಮ ಕಾಫಿ ಬುಯಿ ಮಿಸ್ ಲಸ್ವಿ ಏನ ಬುಯಿ ಗೆ ಬೆಂ ಹಾ ದೆಂ ದೆಂ ದೆಂ ದೆಂ ಮಿ ಹಾ ಕಾ ಹಾ ದಕ್ಕಾ ರೆ ಕಣ್ಣಿ ಮಿ ಫೋನ್ನಾ
0: ಎಕ್ಕುಳ
2: ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್
0: ಶಾಹು ಫೆಣಿಗೆಂಗು
2: ಶಾಹು ಆಯ್ಕೊ ದೆಂಗಿಮ್ಮಿ ಹಾಸಿಂಗೆ
0: ಹಿಸಾಬದ್ದಾಣೆ
2: ಶಾಹು ಮೇ ಅರಿ ಎಬ್ಬೈ ಗುತಿ ಬೆಂಜೇನೋ ಮೀ ಹುಲ್ಲ ವಾ ಕುಳು ಅಮ್ಮೆಸ್ ಏರೋ ಲದಾ ಕುರ ಮೀ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣೆ ಶಾಹು ಹುಣ್ಣಂಗ ಬೇರೋ ಮಣಿ
1: ವಿಡಿಯೋ ಕೊಳ ಹಮ ಹೀವೇ ತೋ ದೆಂ ಕುಳೆ ವೇನೆ ಸಿಲುಮ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಲಿಯಾ ಮೀ ಹಕ ವೇಜೆ ಹುಸಾಸ್ ನೆರೆ ಅದು ಮಾ ವಿಚಂಗೇನೆ
0: ಮೀ ಹರಸು ಮೀ ಅದು ಗೆತಿ ಮೊಳಿ ಮೌಲೂತಿ ಬದಲು
2: ಅಮರಾ ಲಫ್ ಅಮರಾ ಲಫ್ ತಿ ಕೊಳ ಇಂಗೆ ಮೀನೆ ಮಾಮುನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೇದಂತಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಮಿನ್ನೆ ಅಂಗೇನ ಮಣಿ ಕ ಮಸ್ತಾ ತಿ ದಕ್ಕಾವಾ ಕೆ ಫುಲಿ ಎಬ್ಬ ಸಿಂಗೆ ಹಮ
0: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಲವದ ಎಮ್ಮ ಲವ ಜಹಾಲ್ ದೇನ ವರ ಫಾಜ್ ಬದ್ದ ವಕೀಲ ಅನ್ಮೆಗೆ

0: एहारा निहार, एहारा मिहार,
1: एहारा मिहार में पर यंग अलगन मिया तो मिने की हिंदी लवे नवर्ष थे कन्वो दिया फस्ट बना हरों ने के बॉलीवुड के मशहूर फिल्म करण अर्जुन के लवे मिलावे की मुझको राणा जी माफ करना।

नमार से तेक नोदी है फास्त बनाहरने के बॉलीवुड के मशहूर फिल्म करण अर्जुन के अलावा मुझको राणा जी माफ करना के मॉडर्न रीमेक राणा जी 2.0 ने रिफवनी दिहास 26 बनाहरों के जुलाई में होगी 27 बना दो

0: एहारा निहार, एहारा मिहार।
1: दिवे एफएम नुवदिह एकम मेगाहर्ट्ज़। दिवेंगे मुनिफु एफिलवा देनुमुगा अबदुस।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवेही एफएम दिवेही एफएम दिवेही नाइक दिवेही नाइक
1: नुवदीह एकम मेगाहर्ट्ज दिवेही एफएम
2: लवे कफ़ा हो
3: लवे

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर गुजालों की राह देखूंगा। कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: वर्जन 2.0

0: Version 2.0.
1: उनके अंदाज़े करम की पीर नसीरुद्दीन नसीर लिवा नुसरत फातेह अली खान के अफवा मशहूर असर कदा कव्वालिये।

0: ज़ेन, दुंबे।
1: ज़ेवियन सी गेंदिये मेरा हो गया डा। ख्याल के वाफ़ा किनी गेंदिये दिए नों, आतु को एक कॉफ़ी तशिवस बंटुन्नु भी किरिया। बार वेगेंदिया हितु गे तेलों हामे का गलवमों, ज़ेवियन नुतनवस कम गे हिनितु मुमे दिंग। ज़ेवियन न बलंगुरी मेरा हुआ ज़ेवियन गे कातु के शिंग। इस जहांगुलों ज़ेवियन गे मून गे कुलवर तंग एन एफेनी हिनिवस सादे वनो।
2: अनेक का जिन्निया का कुट्टा तमे आदे वुने।
3: तीहम विस बुने इधर दोंबे विस नुनी दिगंत।
2: तारा अन्ना ने रुकोला कुं।
3: ओहो, रोमांटिक मिडनाइट एडवेंचर्स दो।
2: वाह काम बुरा नोले। दोंबे वीरोंगुरे जंगा तम्मी आई विस। मिता आंधेरी की तेरे गए थे। हिनी तुम्हें मुंदिया को तुम ही विवोड़ मोया इंगे।
3: लोबी वी में इंगे निकी हिनत।
1: ज़ेवियन के सवाल और मेरा हसी हुनो। एन अपालंग इंदे वोनी ज़ेवियन के मोना। इस सवाल का जवाब देन विस एन है करने गुनो। दिरुलुम के ए बाब का एना वनी ना कामयाब वेफा। हमे ए आयकु का लोबी का एन है की माहिर विस नो। हयातु गा वेवनो फुरतम लोए प फुरक स्तीफा एन जवाजी हयात फेशी बीरट सकाय कीगा। लोबी के मौलुवा ज़ेवियन ना ईर्षा दिनुमुगा एना कुफुवस हमनुवे।
2: ए मीहेगे मतिंग अबदु हांदुमा कुरे वेन्या हुरी लोबी वेफा।
3: आद एक्सपीरियंसिंग ए बहुट दानी दे रोमांटिक नाइट अहन्ना हेदि हराबवा का बेनमनु।
4: आर में ना फीलन ति उलेनी लोबी के सवाल को फ तिहा फसे हंदु लन्नु कुरानेंगे।
1: ज़ेवियन बलाली मेरा हा हिने तुम मकाय को मेरा हु बोजा हालम ज़ेवियन अनिका वेसिशिंग। मिदस कोलो दोंबे ऑफियो का मा बुरकों उलेतीवेस एना हुन्ननी मा योसेफा। अमिला नफ्सुवेस कुवेरी कुरेवे आइली वियफारे दूकों अमिला वियफारे फेशों गई एम्मे रंगलो निम्मुं बाएवेस बाइफारे हितंगरा। दोंबे गे हितुगा एना या मेदु बुरकमें उवेदाने थी ज़ेवियन नुतन वस्वे। नवस दोंबे गे फरातुं फेन लोएबा ओगा तेरे कमों ज़ेवियन गे हितं हमचे हुंगे नस्ते। दोंबे गे फरातुं लिबे ए बारलुमवेस हितुकवनी शुकुरु। बाई फहरवैस रेस्टोरेंट के ऑपरेशन बाला रंगलु कुरंचे कंतत्तविस किया देने। दोंबे एन देके वा लोबी एफद कोम्मे वगुतेक्का ज़ेवियन्नं इहुसास कुरेवे। देबेन सोफा का हमजेहिलुमों थार आईशीनी वकिंहुरी सरं फियेग्गा। सरं फिये देफ्यारुवमों मिराहु दिक्कोली कोफी तशीका एना हिफी। तारे फिनेफवाकम मेरा हफाहा कुरेउमायकु सोफा कुरिमती हुरी मेजु दशुन रजाएं नका तारा के हशिकनु रजाएं निवा कोल्लदिं। मंजर बलंगिं ज़ेवियन के तुम्फता लुई हिनी तुम्फुमे वेरिवे। एरेंज मेरी जका दोंबे गबूल वुमों एने फुरतम हैरां कम विस्लिपुनु। गबूल कुरं विस उंदकूवे। नाम विस मियेदु एदेमेदु का उफेदेमों दालो बिफेनी एविस रंगलु निम्मु में ताये एना के हितं एरी।
4: Then zen bone bala zen na kaaku deke lobe vigin ta tiuleni
3: someone
2: oy moonu raivani na tiwagge
4: konna metta kiyani
3: saruwa
4: tihiri lobe vevifa lasnu ko lobe wa kan haama kure ehnu ne he miya go saruwa gengus paane.
3: Thank you for the advice. I'll excuse myself. Good night.
1: ज़ेवियन ke hit telili ekan ehen wa fursate nge nanu tene सर्वागे हिंग एने देतो मुये कुफदें फहतुं दान जहिच्चिया एकं कुरंविस एना फहिन मुचेहेने। ज़ेवियन दिवमाय कु थाराया मिराह नजर बदल को लेवनो। थारागे तुम्फतु गवनी फुंग हिनी तुम्वुमे। एना थेदुवेला मुंगोस मिराहुगे उंगु गाई शिंग।